आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशम्बे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।

प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो ओवजी तोजिक और आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। हमारे सांस्कृतिक भाग में हमने तय किया कि आपको हकीम अबुल कासिम फिरदौसी के बारे में बताएंगे। हमारे साथ रहे। حکیم ابوالقاسم فردوسی تاجکی فارسی کوی تھے جنہوں نے جگت پرسید شاہنامہ کی رچنا کی۔ وہ تاجکی فارسی ساہتیہ کے سب سے پربھاوی ساہتیہکار ہے۔ شاہنامے میں انہوں نے 60ویں صدی میں فارس پر عربوں کے وجے ہونے کے پہلے کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ رچنا بعد میں فارس کی راشٹری مہاکاویہ بن گئی ہے۔ فردوسی کا جنم 920 عیسائی میں خراسان کے توس नामा कस्बे में हुआ है। असदी नामा कवि ने उसे शिक्षा दी और कविता की ओर प्रेरित किया है। उसने पौराणिक राजाओं के संबंध में उसे एक ग्रंथ दिया, जिसके आधार पर फिरदौसी ने शाहनामे की रचना की। इसमें 7000 शेर मौजूद है। वो 35 वर्ष तक इस महान कार्य में व्यस्त रहा है और 25 फरवरी 1010 ईसाई को इसे पूरा किया है। इस समय वो 85 वर्ष का हो चुका था। उसने ये काव्य सुल्तान महमूद गजनवी को समर्पित किया, जिसने 999 ईसाई में खुरासान विजय कर लिया था। उसे केवल 20,000 दिरहम प्रदान किए गए। फिरदौसी के तन बदन में आग लग गई। वो अपने देश की हिरात की ओर भागा, किंतु भागने से पूर्व एक कविता शाहनामे में जोड़ गया, जिसमें सुल्तान महमूद की घोर निंदा की गई। शाहनामे में फिरदौसी ने फारस के पौराणिक बादशाहों की, जिसके कारनामों से वो अत्यधिक प्रभावित था, बरी की प्रशंसा की है। उसकी कविता से प्राचीन ईरान के प्रति उसका प्रेम एवं अरबों के प्रति धीरना का पूरा आभास मिलता है। सभ्यता कुत्तर मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए उसने बाद में यूसुफ जुलेखा नामक मसनवी लिखी, जिससे बहावित शासक बहा दौला तथा उसके पुत्र सुल्तानुद्दौला को समर्पित किया है। तदुपरांत वो अपनी मातृभूमि तूस लौट आया और वहीं उसकी मृत्यु हुई है। उसकी कब्र वहां के दर्शनीय स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि जब उसका जनाजा पास के एक गांव के फाटक से निकल रहा था, एक कारवां सुल्तान महमूद के भेजे हुए 60,000 दिनार लेकर पहुंचा, जिनके कवि को आशा थी। फिरदौसी के पुत्री ने समस्त धन दान पुन्या में लगा दिया। शाहनामा की बड़ी ही सुंदर सचित्र हस्तलिपियां संसार के बड़े बड़े संग्रहालयों में सुरक्षित है। 1811 ईसाई में कलकत्ते में 1811 ईसाई में कलकत्ते में 1878 ईसाई में पेरिस में और 1877 1850 ईसाई के बीच लंदन से इसके संस्करण प्रकाशित हुए हैं। तदुपरांत भारत और ईरान से उनके संस्करण प्रकाशित हुए हैं। संसार के अनेक भाषाओं में इसके अनुवाद छप चुके हैं। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने फिरदौसी को ये वचन दिया था कि वो शाहनामा के हर शब्द के लिए एक दिनार देगा। वर्षों की मेहनत के बाद जब शाहनामा तैयार हो गया है और फिरदौसी उसे लेकर महमूद गजनवी के दरबार में गया, तो सम्राट ने उससे प्रत्येक शब्द के लिए एक दिनार नहीं बल्कि एक दिरहम का भुगतान करा दिया है। कहा जाता है कि इस पर नाराज होकर फिरदौसी लौट गया और उसने एक दिरहम भी नहीं लिया। ये वायदा खिलाफी कुछ ऐसी थी जैसे किसी कवि की प्रतिशब एक रुपये देने का वचन देकर प्रतिशब एक पैसा दिया जाए। फिरदौसी ने उसे से आकर महमूद गजनवी के खिलाफ कुछ पंक्तियां लिखी। वे पंक्तियां इतनी प्रभावशाली थी कि पूरे साम्राज्य में फैल गई है। कुछ साल बाद महमूद गजनवी से उसके विश्वासपात्र मंत्रियों ने निवेदन किया कि फिरदौसी को उसी दर पर भुगतान कर दिया जाए तो तय की गई थी। सम्राट के कारण पूछने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग साम्राज्य के जिस कोने में जाते हैं,
ہمیں وہ پانکتیاں سننے کو ملتی ہے جو فردوسی نے آپ کے ورود لکھی ہے اور ہمارے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اسے نردھارت در پر پیدا دے دیا جائے گا تو ہمیں بڑا نیتک بل ملے گا۔ سمراٹ نے آدیش دے دیا، دیناروں سے بھری گاڑی جب فردوسی کے گھر پہنچی تو گھر کے اندر سے فردوسی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ پوری عمر غریبی، تنگی اور مفلسی میں کاٹنے کے بعد فردوسی مر چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ فردوسی کی ایک ماتر سنتان اس کی لڑکی نے بھی یہ دھان لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح سمراٹ کبھی کا قرضدار رہا اور آج بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج فردوسی کا شاہنامہ جتنا پرسید ہے اتنا ہی یا اس سے زیادہ پرسید وہ پنکتیاں ہے جو فردوسی نے محمود غزنوی کے آلوچنا کرتے ہوئے لکھی تھی۔ فردوسی کے شاہنامہ دراصل فارسی کا اتہاس ہی نہیں، اسمتا کی پہچان ہے۔ اس میں پرچین فارس کی اپلبدھیوں کا بخان ہے، سمراٹوں کی اتہاس ہے، پرچین فارسی گرنتھوں کو نیا روپ دے کر ان کو شامل کیا گیا ہے۔ متحق اور اتہاس کے سمشرن سے ایک ادبھت پربھاو اتپن ہوا ہے۔ پریم ودروہ ویرتا دشتا منویتا یوت ساہس کے ایسے اتکرش ادھارن ہے جنہوں نے شاہنامہ کو فارسی ساہتیہ کی امر کریتی بنا دیا ہے۔ فارسی ساہتیہ میں شاہنامہ جتنی طرح سے جتنی بار چھپا ہے اتنا اور کئی پستک نہیں چھاپی ہے۔ فردوسی نے رستم اور سہراب جیسے پاتر نرمت کیے ہیں جو مانو سمرتی کا حصہ بن چکے ہیں۔ جیسا کہ لوگوں نے آپ نے بڑے کویوں کے ساتھ کیا ہے، فردوسی کے مقبرے کے چاروں اور سندر باغ ہے، ادھر ادھر ان کی پرتیمائیں لگی ہے، سنگ مرمر پر ان کی کویتا کے وشیش پرسنگوں کو اکیرا گیا ہے۔ پیارے شروطوں، یہ تھے ہمارے تپانی حکیم ابوالقاسم فردوسی کے بارے میں۔ ریڈیو آواز توجہ کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

Namaste, Priya Sunivalu. Tajikistan ka jame gestra nome paryatan ka vikas. Yehi hamare samay ke vishay. Tajikistan ka jame gastronomic paryatan, yani bhojan sambandhi paryatan, क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और तेजी से विकसित हो रहा हिस्सा है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को राष्ट्रीय व्यंजनों उन्हें बनाने की विधियों स्थानीय उत्पादों और ताजिक लोगों के समृद्ध खाद्य संस्कृति से परिचित कराना है। ताजिक भोजन का इतिहास बहुत प्राचीन है और ये पूर्वी फारसी और मध्य एशियाई परंपराओं के मिश्रण से विकसित हुआ है। ताजिकिस्तान के हर क्षेत्र में भोजन बनाने की अपनी विशेष शैली पाई जाती है जो उसे अन्य क्षेत्रों से अलग बनाती है। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पौष्टिक और गर्म व्यंजन जैसे सूप और मांस आधारित भोजन लोकप्रिय है, जबकि घाटी क्षेत्रों में चावल और सब्जियां से बने व्यंजन अधिक उपयोग किए जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय व्यंजनों में ओशी पलाव शामिल है, जो ताजिक मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है। ये व्यंजन विशेष रूप से शादियों, त्योहारों और महत्वपूर्ण समारोहों में बनाया जाता है। इसके अलावा मंटू, समोसा, कुरतो, शोरबा और शशलिक भी लोगों और पर्यटकों के पसंदीदा व्यंजन है। विदेशी पर्यटक गैस्ट्रोनॉमिक यात्रा के दौरान न केवल इन व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, बल्कि उन्हें बनाने के प्रक्रिया में भी भाग ले सकते हैं। ताजिकिस्तान के कई ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे इस प्रकार का अनुभव प्रदान करते हैं। ये अनुभव पर्यटकों को स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन के करीब लाता है। स्थानीय बाजार भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुशांबे, खुजान और बोख्ता जैसे शहरों के बाजारों में ताजे पहाल, सूखे मेवे, मसाले और जैविक उत्पाद देखे और खरीदे जा सकते हैं। ये बाजार न केवल व्यापार के केंद्र है, बल्कि जीवन सांस्कृतिक स्थान भी है। पारंपरिक रेस्तरां और चाय खाने में पर्यटक ताजी संस्कृति का वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकता है। आमतौर पर भोजन के साथ हरी चाय, पारंपरिक रोटी और राष्ट्रीय मिठाइयां परोसी जाती है। ताजी संस्कृति में रोटी का विशेष महत्व है और इसे आशीर्वाद और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा त्योहारों और राष्ट्रीय आयोजनों में पर्यटक विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को एक साथ देख सकते हैं। ये कार्यक्रम देश के गैस्ट्रोनॉमिक संस्कृति को और गहराई से समझने का अवसर प्रदान करते हैं। ताजिकिस्तान में गैस्ट्रोनॉमिक पर्यटन केवल भोजन का आनंद देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और ताजिक लोगों के मेहमान नवाजी को समझने का एक माध्यम भी है। ये पर्यटन प्रकार स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गैस्ट्रोनॉमिक पर्यटन एक ऐसा पर्यटन प्रकार है जिसमें पर्यटक स्थानीय व्यंजनों तथा पकला की परंपराओं से परिचित होने के उद्देश्य से विभिन्न देशों और क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। ये पर्यटन प्रकार पिछले वर्षों में ताजिकिस्तान गणराज्य में तेजी से विकसित हुआ है। नवरोज, मेहरगान, तिरगान और सदा जैसे राष्ट्रीय त्योहारों का आयोजन तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव इस प्रकार के पर्यटन के विकास के लिए अनुकूल आधार प्रदान करते हैं। इन राष्ट्रीय त्योहारों को एक पर्यटन ब्रांड के रूप में प्रचारित किया जाता है। इनके माध्यम से ताजिक राष्ट्रीय व्यंजन पुनर्जीवित होते हैं और देशी एवं विदेशी पर्यटकों इनके स्वाद का आनंद लेते हैं। देश में कई प्रतियोगिताएं और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से विदेशी पर्यटक राष्ट्रीय व्यंजनों का स्वाद चखते हैं। इसी आधार पर पर्यटन मार्ग बनाए जाते हैं।
جس سے پریاتک تیوہاروں اور اتساوں سے پریچیت ہوتے ہیں تتھا ریستوران اور بھوجنالایوں کے سیواؤں کا ویاپک روپ سے اپیوگ کرتے ہیں۔ ان راشٹری تیوہاروں اور اتساوؤں میں تاجک رسویا یعنی مہیلائیں تاجک مہیلائیں دین کے وبھن سمے ناشتہ دوپہر اور رات کے بھوجن کے لیے وبھن راشٹری ویانجن تیار اور پردرشت کرتی ہے۔ ان میں شامل ہے اوشے پلاو، سبزی اور مانس کے کباب، لولا کباب، جگر بنا ہوئی سیخ کباب، چکن بنا ہوئی، کالا پوچا، قروتا، شکروب، اوشے بریدا، اوشے توپا تتھا وبھن ڈیری اتپا جیسے جرگو، چکا، قروت، پلا، مکھن، پنیر، کریم، دہی، دودھ سے بنا چائے، شیر برین، شیربات، شیر کدو اور وبھن پرکار کے سلاد بھی پردرشت کیے جاتے ہیں۔ تجکستان گنرجا میں گاسٹرونومک پریاتن کا ایک پرمکھ آکرشن نوروز کے وشیش ویانجن جس میں سومناک تتھا ہفسین اور ہفشین شامل ہے جنہیں انتراشی نوروز اتسو کے دوران تیار کیا جاتا ہے۔ نوروز کو ایک پریاتن برانڈ کے روپ میں پرستوت کیا جاتا ہے اور ہر ورش بڑی سنکھیا میں ودیشی پریاتک نوروز تتھا تجکستان کے وسنت ریتو کو دیکھنے کے لیے دیش میں آتے ہیں۔ क्षेत्र के विशेषज्ञों ने गास्ट्रोनॉमिक पर्यटन को दो भागों में विभाजित किया है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण गास्ट्रोनॉमिक पर्यटन में पर्यटक मुख्य रूप से पारंपरिक व्यंजनों के निर्माण में भाग लेते हैं और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों जैसे अंगूर, सब्जियां और कृषि उत्पाद के संग्रह में शामिल होते हैं। शहरी गास्ट्रोनॉमिक पर्यटन में पर्यटक खाद्य उत्पादन करने वाले कारखानों और उद्यमों की गतिविधियों से परिचित होती है। इस प्रकार गास्ट्रोनॉमिक यात्रा पर्यटकों को विभिन्न स्थानों पर व्यापक राष्ट्रीय व्यंजनों से परिचित होने का अवसर प्रदान करती है। तजिकिस्तान गणराज्य आने वाले कई पर्यटक ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा करना पसंद करते हैं ताकि वे स्वच्छ हवा में सांस ले सकें, देश की प्राकृतिक सुंदरता देख सकें और स्थानीय लोगों के जीवन तथा क्षेत्रीय भोजन संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। वे ग्रामीण महिलाओं द्वारा रोटी बनाने, कुरुत तैयार करने और शबुरीदा बनाने और विशेष रूप से वसंत ऋतु में सोमनाक तैयार करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं जो कई प्रकार का होता है। ये ज्ञात है कि ताजिक राष्ट्रीय व्यंजनों को बनाने की प्रक्रिया उन्हें बहुत आकर्षक लगती है और कई पर्यटक भोजन पकाने के दौरान ताजिक महिलाओं की सहायता भी करते हैं। تجکستان گنرجا کے راشی ویانجن وش بہار میں پرسدھ ہے اور تاجک لوگوں کی پاکلا صدیوں کے سمرد اتہاس کے پربھاؤ میں وکاسیت ہوئی ہے۔ تاجک راشی ویانجن مکھیہ روپ سے سبزیاں، مانس اور آتے سے بنے ویانجنوں پر آدھارت ہے۔ سبزی اور مانس کے کباب، چکن، سوسیج، کروتاب، شکروب، قتلما بہت لوک پری ویانجن ہے۔ راشٹری بھوجن کو سگندھت اور اوشدھی جڑی بوٹیاں کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ تاجک راشی ویانجنوں میں اوشے پلاو کا وشیش استھان ہے۔ ورش 2016 میں تاجک اوشے پلاو کو یونیسکو کی وش دھروہر سوچی میں شامل کیا گیا ہے۔ اوشے پلاو کی 200 سے ادھک بنانے کی گتیویدھیاں موجود ہیں۔ اس ویانجن کی تیاری اور اپیوگ سماج کے وبھن ورگوں کے لوگوں کو ایکجٹ کرتی ہے۔ تاجک اوشے پلاو حال کے ورشوں میں انتراشٹری اتسووں میں بھی پرستوت کیا گیا ہے اور ودیشی پریاتک اس کے سواد کا آنند لیتے ہیں۔ تجکستان گنرجا کے پریاتن وکاس سمیتی کے انوسار دیش میں 367 پریاتن سیوا پردتا سکری ہے، جن میں سے 225 ہوتال، 107 ہوتال اور موتال، 56 سینیٹوریم، 6 اپچار کیندر، 4 سوستھیا شیویر، 10 وشرام گری، 1 پینشن اور 4 پریاتن ایوان منورانجن آدھار شامل ہے۔ شنوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان سنستھانوں کے ذمہ دار لوگ ہوسٹلوں اور موٹلوں کو راشٹری اور آدھونک ڈیزائنوں سے سجانے کا پریاس کر رہے ہیں، ساتھ ہی انہیں اتلاس، ادراس اور چکان جیسے پرمپرک کپڑوں کے ڈیزائنوں سے بھی سجایا جاتا ہے جو پریتکوں کو آکرشت کرنے کا ایک مہتوپورن طریقہ ہے۔
پریا شروتاو اپنے ہمارے کاریکرام میں تاجکستان گنرجا میں گاسترانومک پریاتن کا وسائی وشار پر ہماری پرستوتی سنی. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں.

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

आवाज़ें ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ें ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।

प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो ओवजे तोजिक और आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। हमारे सांस्कृतिक भाग में हमने तय किया कि आपको हकीम अबुल कासिम फिरदौसी के बारे में बताएंगे। हमारे साथ रहे। حکیم ابوالقاسم فردوسی تاجکی فارسی کوی تھے جنہوں نے جگت پرسید شاہنامہ کی رچنا کی۔ وہ تاجکی فارسی ساہتیہ کے سب سے پربھاوی ساہتیہکار ہے۔ شاہنامے میں انہوں نے 7ویں صدی میں فارس پر عربوں کے وجے ہونے کے پہلے کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ رچنا بعد میں فارس کی راشٹری مہاکاویہ بن گئی ہے۔ فردوسی کا جنم 920 عیسائی میں خراسان کے توس नामा कस्बे में हुआ है। असदी नामा कवि ने उसे शिक्षा दी और कविता की ओर प्रेरित किया है। उसने पौराणिक राजाओं के संबंध में उसे एक ग्रंथ दिया, जिसके आधार पर फिरदौसी ने शाहनामे की रचना की। इसमें 7000 शेर मौजूद है। वो 35 वर्ष तक इस महान कार्या में व्यस्त रहा है और 25 फरवरी 1010 ईसाई को इसे पूरा किया है। इस समय वो 85 वर्ष का हो चुका था। उसने ये काव्य सुल्तान महमूद गजनवी को समर्पित किया, जिसने 999 ईसाई में खुरासान विजय कर लिया था। उसे केवल 20,000 दिरहम प्रदान किए गए। फिरदौसी के तन बदन में आग लग गई। वो अपने देश की हिरात की ओर भागा, किंतु भागने से पूर्व एक कविता शाहनामे में जोड़ गया, जिसमें सुल्तान महमूद की घोर निंदा की गई। शाहनामे में फिरदौसी ने फारस के पौराणिक बादशाहों की, जिसके कारनामों से वो अत्यधिक प्रभावित था, बरी की प्रशंसा की है। उसकी कविता से प्राचीन ईरान के प्रति उसका प्रेम एवं अरबों के प्रति धीरना का पूरा आभास मिलता है। सभ्यता कुत्तर मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए उसने बाद में यूसुफ जुलेखा नामक मसनवी लिखी, जिससे बहावित शासक बहा दौला तथा उसके पुत्र सुल्तानुद्दौला को समर्पित किया है। तदुपरांत वो अपनी मातृभूमि तूस लौट आया और वहीं उसकी मृत्यु हुई है। उसकी कब्र वहां के दर्शनीय स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि जब उसका जनाजा पास के एक गांव के फाटक से निकल रहा था, एक कारवां सुल्तान महमूद के भेजे हुए 7000 दिनार लेकर पहुंचा, जिनके कवि को आशा थी। फिरदौसी के पुत्री ने समस्त धन दान पुण्या में लगा दिया। शाहनामा की बड़ी ही सुंदर सचित्र हस्तलिपियां संसार के बड़े बड़े संग्रहालयों में सुरक्षित है। 1811 ईसाई में कलकत्ते में 1811 ईसाई में कलकत्ते में 1878 ईसाई में पेरिस में और 1877-1850 ईसाई के बीच लंदन से इसके संस्करण प्रकाशित हुए हैं। तदुपरांत भारत और ईरान से उनके संस्करण प्रकाशित हुए हैं। संसार के अनेक भाषाओं में इसके अनुवाद छप चुके हैं। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने फिरदौसी को ये वचन दिया था कि वो शाहनामा के हर शब्द के लिए एक दिनार देगा। वर्षों की मेहनत के बाद जब शाहनामा तैयार हो गया है और फिरदौसी उसे लेकर महमूद गजनवी के दरबार में गया, तो सम्राट ने उससे प्रत्येक शब्द के लिए एक दिनार नहीं बल्कि एक दिरहम का भुगतान करा दिया है। कहा जाता है कि इस पर नाराज होकर फिरदौसी लौट गया और उसने एक दिरहम भी नहीं लिया। ये वायदा खिलाफी कुछ ऐसी थे जैसे किसी कवि की प्रतिशब एक रुपये देने का वचन देकर प्रतिशब एक पैसा दिया जाए। फिरदौसी ने उसे से आकर महमूद गजनवी के खिलाफ कुछ पंक्तियां लिखी। वे पंक्तियां इतनी प्रभावशाली थे कि पूरे साम्राज्य में फैल गई है। कुछ साल बाद महमूद गजनवी से उसके विश्वासपात्र मंत्रियों ने निवेदन किया कि फिरदौसी को उसी दर पर भुगतान कर दिया जाए तो तय की गई थी। सम्राट के कारण पूछने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग साम्राज्य के जिस कोने में जाते हैं,
ہمیں وہ پانکتیاں سننے کو ملتی ہے جو فردوسی نے آپ کے ورود لکھی ہے اور ہمارے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اسے نردھارت در پر پیدا دے دیا جائے گا تو ہمیں بڑا نیتک بل ملے گا۔ سمراٹ نے آدیش دے دیا، دیناروں سے بھری گاڑی جب فردوسی کے گھر پہنچی تو گھر کے اندر سے فردوسی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ پوری عمر غریبی، تنگی اور مفلسی میں کاٹنے کے بعد فردوسی مر چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ فردوسی کی ایک ماتر سنتان اس کی لڑکی نے بھی یہ دھان لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح سمراٹ کوی کا قرضدار رہا اور آج بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج فردوسی کا شاہنامہ جتنا پرسید ہے اتنا ہی یا اس سے زیادہ پرسید وہ پنکتیاں ہے جو فردوسی نے محمود غزنوی کے آلوچنا کرتے ہوئے لکھی تھی۔ فردوسی کے شاہنامہ دراصل فارسی کا اتہاس ہی نہیں، اسمتا کی پہچان ہے۔ اس میں پرچین فارس کی اپلبدھیوں کا بکھان ہے، سمراٹوں کی اتہاس ہے۔ پرچین فارسی گرنتھوں کو نیا روپ دے کر ان کو شامل کیا گیا ہے۔ متحق اور اتہاس کے سمشرن سے ایک ادبھت پربھاو اتپان ہوا ہے۔ پریم ودروہ ویرتا دشتا منویتا یوت ساہس کے ایسے اتکرش ادھارن ہے جنہوں نے شاہنامہ کو فارسی ساہتیہ کی امر کریتی بنا دیا ہے۔ فارسی ساہتیہ میں شاہنامہ جتنی طرح سے جتنی بار چھپا ہے اتنا اور کئی پستک نہیں چھاپی ہے۔ فردوسی نے رستم اور سہراب جیسے پاتر نرمت کیے ہیں جو مانو سمرتی کا حصہ بن چکے ہیں۔ جیسا کہ لوگوں نے آپ نے بڑے کویوں کے ساتھ کیا ہے، فردوسی کے مقبرے کے چاروں اور سندر باغ ہے، ادھر ادھر ان کی پرتیمائیں لگی ہے۔ سنگ مرمر پر ان کی کویتا کے وشیش پرسنگوں کو اکیرا گیا ہے۔ پیارے شروطوں، یہ تھے ہمارے تپانی حکیم ابوالقاسم فردوسی کے بارے میں۔ ریڈیو آواز توجہ کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

Namaste, Priya Sunivalu. Tajikistan Ganarjah mein gastronomic paryatan ka vikas. Yeh hai hamare samay ke vishay. Tajikistan Ganarjah mein gastronomic paryatan, yani bhojan sambandhi paryatan, क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और तेजी से विकसित हो रहा हिस्सा है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को राष्ट्रीय व्यंजनों उन्हें बनाने की विधियों स्थानीय उत्पादों और ताजिक लोगों के समृद्ध खाद्य संस्कृति से परिचित कराना है। ताजिक भोजन का इतिहास बहुत प्राचीन है और ये पूर्वी फारसी और मध्य एशियाई परंपराओं के मिश्रण से विकसित हुआ है। ताजिकिस्तान के हर क्षेत्र में भोजन बनाने की अपनी विशेष शैली पाई जाती है जो उसे अन्य क्षेत्रों से अलग बनाती है। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पौष्टिक और गर्म व्यंजन जैसे सूप और मांस आधारित भोजन लोकप्रिय है, जबकि घाटी क्षेत्रों में चावल और सब्जियां से बने व्यंजन अधिक उपयोग किए जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय व्यंजनों में ओशी पलाव शामिल है जो ताजिक मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है। ये व्यंजन विशेष रूप से शादियों त्योहारों और महत्वपूर्ण समारोहों में बनाया जाता है। इसके अलावा मंटू समोसा कुरुतो शोरबा और शशलिक भी लोगों और पर्यटकों के पसंदीदा व्यंजन है। विदेशी पर्यटक गैस्ट्रोनॉमिक यात्रा के दौरान न केवल इन व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, बल्कि उन्हें बनाने के प्रक्रिया में भी भाग ले सकते हैं। ताजिकिस्तान के कई ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे इस प्रकार का अनुभव प्रदान करते हैं। ये अनुभव पर्यटकों को स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन के करीब लाता है। स्थानीय बाजार भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुशांबे, खुजान और बोख्ता जैसे शहरों के बाजारों में ताजे पहाल सूखे मेवे मसाले और जैविक उत्पाद देखे और खरीदे जा सकते हैं। ये बाजार न केवल व्यापार के केंद्र है बल्कि जीवन सांस्कृतिक स्थान भी है। पारंपरिक रेस्तरां और चाय खाने में पर्यटक ताजी संस्कृति का वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकता है। आमतौर पर भोजन के साथ हरी चाय, पारंपरिक रोटी और राष्ट्रीय मिठाइयां परोसी जाती है। ताजी संस्कृति में रोटी का विशेष महत्व है और इसे आशीर्वाद और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा त्योहारों और राष्ट्रीय आयोजनों में पर्यटक विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को एक साथ देख सकते हैं। ये कार्यक्रम देश के गैस्ट्रोनॉमिक संस्कृति को और गहराई से समझने का अवसर प्रदान करते हैं। ताजिकिस्तान में गैस्ट्रोनॉमिक पर्यटन केवल भोजन का आनंद देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और ताजिक लोगों के मेहमान नवाजी को समझने का एक माध्यम भी है। ये पर्यटन प्रकार स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गैस्ट्रोनॉमिक पर्यटन एक ऐसा पर्यटन प्रकार है जिसमें पर्यटक स्थानीय व्यंजनों तथा पकला की परंपराओं से परिचित होने के उद्देश्य से विभिन्न देशों और क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। ये पर्यटन प्रकार पिछले वर्षों में ताजिकिस्तान गणराज्य में तेजी से विकसित हुआ है। नवरोज, मेहरगान, तिरगान और सदा जैसे राष्ट्रीय त्योहारों का आयोजन तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव इस प्रकार के पर्यटन के विकास के लिए अनुकूल आधार प्रदान करते हैं। इन राष्ट्रीय त्योहारों को एक पर्यटन ब्रांड के रूप में प्रचारित किया जाता है। इनके माध्यम से ताजिक राष्ट्रीय व्यंजन पुनर्जीवित होते हैं और देशी एवं विदेशी पर्यटकों इनके स्वाद का आनंद लेते हैं। देश में कई प्रतियोगिताएं और उत्सव आयोजित किए जाते हैं जिनके माध्यम से विदेशी पर्यटक राष्ट्रीय व्यंजनों का स्वाद चखते हैं। इसी आधार पर पर्यटन मार्ग बनाए जाते हैं।
جس سے پریاتک تیوہاروں اور اتساووں سے پریچیت ہوتے ہیں تتھا ریستوران اور بھوجنالایوں کے سیواؤں کا ویاپک روپ سے اپیوگ کرتے ہیں۔ ان راشٹری تیوہاروں اور اتساووں میں تاجک رسویا یعنی مہیلائیں تاجک مہیلائیں دین کے وبھن سمائے ناشتہ دوپہر اور رات کے بھوجن کے لیے وبھن راشٹری ویانجن تیار اور پردرشت کرتی ہے۔ ان میں شامل ہے اوشے پلاو، سبزی اور مانس کے کباب، لولا کباب، جگر بنا ہوئی سیخ کباب، چکن بنا ہوئی، کالا پوچا، قروتا، شکروب، اوشے بریدا، اوشے توپا تتھا وبھن ڈیری اتپا جیسے جرگو، چکا، قروت، پلا، مکھن، پنیر، کریم، دہی، دودھ سے بنا چائے، شیر برنج، شیربات، شیر کدو اور وبھن پرکار کے سلاد بھی پردرشت کیے جاتے ہیں۔ تجکستان گنرجا میں گاسترانومی پریاتن کا ایک پرمکھ آکرشن نوروز کے وشیش ویانجن جس میں سومناک تتھا ہفسین اور ہفشین شامل ہے جنہیں انتراشی نوروز اتسو کے دوران تیار کیا جاتا ہے۔ نوروز کو ایک پریاتن برانڈ کے روپ میں پرستوت کیا جاتا ہے اور ہر ورش بڑی سنکھیا میں ودیشی پریاتک نوروز تتھا تجکستان کے وسنت ریتو کو دیکھنے کے لیے دیش میں آتے ہیں۔ क्षेत्र के विशेषज्ञों ने गास्ट्रोनॉमिक पर्यटन को दो भागों में विभाजित किया है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण गास्ट्रोनॉमिक पर्यटन में पर्यटक मुख्य रूप से पारंपरिक व्यंजनों के निर्माण में भाग लेते हैं और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों जैसे अंगूर, सब्जियां और कृषि उत्पाद के संग्रह में शामिल होते हैं। शहरी गास्ट्रोनॉमिक पर्यटन में पर्यटक खाद्य उत्पादन करने वाले कारखानों और उद्यमों की गतिविधियों से परिचित होती है। इस प्रकार गास्ट्रोनॉमिक यात्रा पर्यटकों को विभिन्न स्थानों पर व्यापक राष्ट्रीय व्यंजनों से परिचित होने का अवसर प्रदान करती है। तजकिस्तान गणराज्य आने वाले कई पर्यटक ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा करना पसंद करते हैं ताकि वे स्वच्छ हवा में सांस ले सकें, देश की प्राकृतिक सुंदरता देख सकें और स्थानीय लोगों के जीवन तथा क्षेत्रीय भोजन संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। वे ग्रामीण महिलाओं द्वारा रोटी बनाने, कुरुत तैयार करने और शबुरीदा बनाने और विशेष रूप से वसंत ऋतु में सोमनाक तैयार करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं जो कई प्रकार का होता है। ये ज्ञात है कि ताजिक राष्ट्रीय व्यंजनों को बनाने की प्रक्रिया उन्हें बहुत आकर्षक लगती है और कई पर्यटक भोजन पकाने के दौरान ताजिक महिलाओं की सहायता भी करते हैं। تجکستان گنرجا کے راشٹریہ ویانجن وشو بھر میں پرسدھ ہے اور تاجک لوگوں کی پاکلا صدیوں کے سمرد اتہاس کے پربھاؤ میں وکاسیت ہوئی ہے۔ تاجک راشٹریہ ویانجن مکھیہ روپ سے سبزیاں، مانس اور آتے سے بنے ویانجنوں پر آدھارت ہے۔ سبزی اور مانس کے کباب، چکن، سوسیج، کروتاب، شکروب، قتلما بہت لوک پری ویانجن ہے۔ راشٹریہ بھوجن کو سگندھت اور اوشدھی جڑی بوٹی کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ تاجک رشی ویانجنوں میں اوشے پلاو کا وشیش ستھان ہے۔ ورش 2016 میں تاجک اوشے پلاو کو یونیسکو کی وشو دھروہر سوچی میں شامل کیا گیا ہے۔ اوشے پلاو کی 200 سے ادھک بنانے کی گتیویدھیاں موجود ہیں۔ اس ویانجن کی تیاری اور اپیوگ سماج کے وبھن ورگوں کے لوگوں کو ایکجٹ کرتی ہے۔ تاجک اوشے پلاو حال کے ورشوں میں انتراشٹریہ اتسووں میں بھی پرستوت کیا گیا ہے اور ودیشی پریاتک اس کے سواد کا آنند لیتے ہیں۔ تجکستان گنرجا کے پریاتن وکاس سمیتی کے انوسار دیش میں 367 پریاتن سیوا پردتا سکری ہے، جن میں سے 225 ہوٹل، 107 ہوٹل اور موتال، 56 سینیٹوریم، 6 اپچار کیندر، 4 سوستھیا شیویر، 10 وشرام گری، 1 پینشن اور 4 پریاتن ایوان منورانجن آدھار شامل ہے۔ نرکشنوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان سنستھانوں کے ذمہ دار لوگ ہوسٹلوں اور موتلوں کو راشٹریہ اور آدھونک ڈیزائنوں سے سجانے کا پریاس کر رہے ہیں، ساتھ ہی انہیں اتلاس، ادراس اور چکان جیسے پرمپرک کپڑوں کے ڈیزائنوں سے بھی سجایا جاتا ہے جو پریتکوں کو آکرشت کرنے کا ایک مہتوپورن طریقہ ہے۔
پریا شروتا او اپنے ہمارے کاریکرام میں تاجکستان گنرجا میں گاسترانومک پریاتن کا وسائی وشار پر ہماری پرستوتی سنی. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے اریزوں کے ساتھ رہیں.

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।